0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
1: है।

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट

करके घोड़े की काठी तक वढ़ सुटदे ने। ऐसे ने महाराज फिर जो भी पातशाह जियां दे कोल शरदा भावना दे नाल कोई प्रश्न लैके आउंदा है ना, महाराज फिर ओहो जिहा उस नूं उपदेश भी दिंदे ने, संतुष्ट भी करदे ने। एक विद्वान पंडित आया है ते पातशाह नूं आके बेनती कीती, महाराज कृपा करके दसो ए परमेश्वर दा वासा किथे है। महाराज जी आखण लगे अपने घर दे अंदर। पातशाह उन्हां दा घर केड़ा है? महाराज आखदे जो साडे शरीर ने। पातशाह जेकर शरीर दे अंदर है फिर वह दिखाई क्यों नहीं दिंदा? महाराज कहिंदे शामा वेले तेरे इस प्रश्न दा उत्तर देवांगे। शामा ढलियां ने पंडित जी फिर आए, महाराज कृपा करके उत्तर बख्शो भी परमेश्वर अंदर है ते दिसदा नहीं। महाराज आखदे रात्रि होवेगी फिर दसांगे। बेचैन हो गया। रात्रि दे समय फिर प्रशादा पानी छक के चरण परसे, महाराज हुण ते उत्तर देव। महाराज आखदे जिस वेले चंद्रमा चढ़ेगा फिर उत्तर देवांगे। ओनी ओनी हिरदे अंदर संगत जी भावना वधदी जांदी है, सस्पेंस वधदा जांदा है कि पातशाह जी की कौतक बरतावणगे। पर जिस वेले पूर्ण आभा लै करके चंद्रमा जोबन उपर अपनी

इतना श्रृंगार करके आई है। इतिहास दसदा है बाई गोलिया ने ओदा लहंगा चुकया सी संगत जी, बाई गोलिया ने। संगत विच दी लंघदी लंघदी पातशाह दे हजूर आके बैठ गई। महाराज जिया ने पवित्र नेत्र खोले ने, जानदे सन के विषय बकारा दी भरी हुई बैठी है। महाराज जिया ने बोल आखे, ऐसा साच शिंगार कर पुत्री पाए खुदाए। ऐ नूर जहां सानू पाउण लई आई सी न, जिन्ना शिंगार तू तनते करके आई है किधरे, वाहेगुरु दे नाम दा शिंगार मनते कीता हुंदा अज सानू तू पा लैणा सी। हैरान हो गई, चरण पकड़ लाए, मानो हंजुआ नल पातशाह दे चरणा नू धो दिता। ऐ सिखां दे गुरुआ मैनू दिल्ली तख्त दे राजे ने वेख्या, लुभाए माण हो गया तेरे अंदर ऐसा की है। पातशाह दे बोल सन, नूर जहां सानू एक पल लई भी मौत नहीं विसरदी, ते जिन्ना नू मौत नहीं विसरदी ओ कदे रब नू नहीं भुलदे। जिन्ना नू रब याद रहिंदा है ए फिर काम क्रोध लोभ मोह हंकार वर्गे जेड़े विषय वकार ने उन्हां उपर जोर नहीं चलाउंदे। संगत जी, भाई मौत विसरी है तां ही रब चेते नहीं, रब चेते नहीं तां ही विषय वकारां दे भरे होए हैं। पर ऐसे पातशाह महाराज जी इस प्रकार उपदेश दे करके सोझी भी बख्श दे, बड़ जोधा बहु पर उपकारी। फिर जदो पर उपकार करन ते आउंदे ने संगत जी, फिर खुले वरतारे वरताउंदे ने। माता सुलखणी वर्गियां नू एक एक पुत्र दी भाल सी, ते महाराज सत सत दे के तोरदे ने। इतिहास दे अंदर माई भिखां दा भी जिक्र आउंदा है। घर विच अत दी गरीबी सी, अखां दी जोर जोत जा रही सी, पुत्र व्याहुण वाला सी, घर संगत जी एदां टुटिया फुटिया पुराना सी, कोई रिश्ता लैके नहीं आउंदा सी। सियाणियां माइयां पातशाह दे हजूर लैके आईयां, सारी संगत गुरु हरगोबिंद पातशाह वल वेखदी है। महाराज मेहर दी निगाह पा करके माई भिखां वल वेखदे ने। जिस वेले संगत जी सारियां ने सुखां दा शुकराना दुखां दी अरदास कर लई है, महाराज जीआं दे बोल सन, माई तू बैठी है कुछ मंगना नहीं, हथ जोड़े महाराज, कुछ मंगना ही नहीं आउंदा। मंगना आउंदा हुंदा ते हुण नूं कुछ ना कुछ प्राप्त हो जांदा। पातशाह दे बोल सन, माई फिर जिवें मंगना आउंदा उवें मंग लै, अज असीं तुठे हां तेरियां झोलियां भर के तोरांगे। हथ जोड़ के माई ने बेनती कीती, जे तुठे हो मेरे साई ए बर मंगदी भिखां। केड़ा बर मंगदी है, सोने दी मधाणी होवे नूं दुध रिड़कदी वेखां, कोठे ते चुबारा होवे विच पोता खेड़दा वेखां। जे तुठे हो मेरे साई ए वर मंगदी भिखां, जे तुठ गए हो ना। फिर महाराज घर दी गरीबी नूं घरों बाहर कढ देवो पातशाह, सोने दियां मधाणियां होवन घर विच लवेरियां होवन नूं दुध नूं रिड़के, ते मैं अपनियां अखां दे नाल वेखां, हुण अखां दी रोशनी भी बख्शिश कर देवो। कोठे ते चुबारा होवे बच पोता खेड़दा वेखां, तुसी ते सत सत बख्शन वाले हो, एक पोते दी दात भी बख्शियो। जे तुठे हो मेरे साई ए वर मंगदी भिखां। मीरी पीरी दे मालक कृपालू दयालू सतगुरु जी, जिन्हां दा संगत जी एक तरीक नूं नगर कीर्तन है और दो तरीक नूं अमृत संचार होना है, ऐसे गुरां तो बार ने बलिहार ने जाइए। गुरु का अमृत लै करके गुरु वाले बनिए, जीवन बतीत करिए, दुरमत दा नाश होवे गुरमत दा प्रकाश होवे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां दित्ते समय दी।

0: जपिहो सारग पाणी कहै नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी।
1: हां जी, पीवहो अमृत सदा रहो रहो, दोहा है शुद्ध उच्चारण करने, पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग, इथे विश्राम। जपिहो जपिहो उच्चारण करना, जपियाह नहीं कहना, जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण किया जपिहो, जाप बोल के ते हाहे दी औंकड़ लाउणी, विच ऐड़ा नहीं लगन देना। आम संगत जदों असीं नहीं ध्यान देंदे, संथ्या कीती होण दे बावजूद भी असीं जपियाह पढ़दे हां, ऐड़ा नहीं है विच। जपिहो सारिग पाणी, सारिग पाणी पाणी बोलना, सारिंग टिप्पी ला के उच्चारण नहीं करना। जपिहो सारग पाणी कहै नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी।
0: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बज हो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी।
1: कच्ची पाठ दे उपर बिंदी है, बिंदी दे सहत ही उच्चारण करना, कच्ची नहीं कहना, कच्ची नासकी उच्चारण करना, जिवें उच्चारण आप जी ने श्रवण किया है।
0: हर हर नित करहे रसना कहया कछु ना जानी, चित जिन का हिर लया माया बोलन पए रवाणी।
1: इस पंक्ति का विश्राम भी महंगे विश्रामां विचों है, चित पाठ ते थोड़ा जिहा ठहरा लाउणा। चित जिन का हिर लया माया, माया पाठ ते विश्राम शुद्ध है, लया ते कई विश्राम ला जांदे हन, ओ अशुद्ध विश्राम है, अर्थ नहीं स्पष्ट हुंदे ना बनदे हन। चित जिनका हिरलया माया बोलन पए रवाणी।

0: आओ। सेव सकत आप उपाए कै करता आपे हुकम वरताए।
1: हां जी, इह भी करता पाठ ते विश्राम लाउणा, सकत पाठ ते जमक जरूर लाउणी। सेव सकत आप उपाए कै करता, इथे विश्राम ध्यान सहित साधु संगत जी इस पंक्ति दा विश्राम जमक ते ठमक तिने चीजा हन। सेव सकत आप उपाए कै करता आपे हुकम वरताए।
0: हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए, तोड़े बंधन होवै मुक्त।

साध संग दी बहुवचन है, आनंद एक वचन पाठ है। इहदे बाबत पिछे भी बहुत बार बेनती कीती संगत दे चरणां दे विच, इह रागी सिंघां ने शब्द बिगाड़ दिता है। गुस्सा वाला को वचन नहीं, बेनती है, मैं माफी मांगदा भी मैनू कहना मेरे मूहों निकल गया। कई बार गल्लां मैं रोकदा भी हुंना पर धक्के नाल निकल जांदी है, की करिए, क्योंकि पिछे सोच सोच के भी किदां इहनू दस्सिया जावे भी इह कित्थों विगड़िया। इह उचारण इन्ना ज्यादा विगड़ चुका है संगत दा, साध संगत दी आनंद आनंद ही करी जांदे। इथों तक कुछ ते हुण इदां भी कहण लग पए जी आनंद ही करना चाहीदा है। दसो भी गुरु साहब ने टिप्पी क्यों नहीं लाई, की घाट सी गुरु साहब च? नहीं, साध संगत दी। दास ने पिछे भी यह बेनती की, जदों टिप्पी दे सहत पाठ होवे ओ एक वचन हुंदा है, जदों टिप्पी नहीं है ते इहदा मतलब हुणे बहुवचन है। जे टिप्पी हो साध संगत दी बहुवचन नाम ही बनाउणा होवे, असीं एक वचन भी अर्थ रखिया होवे, जिहड़ी टिप्पी है ओ मात्रा है, वाधू मात्रा असीं अपने कोलों नहीं ला सकदे किते वी। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच साडे कोल समर्था नहीं है। सो इह जिहड़ा साध संगत दी उचारण है इह बहुत ज्यादा अशुद्ध पक चुका है। तकरीबन साध संगत दी जे एक दो बार, एक दिन बेनती की थी, एक दिन संगत चो भी मैनू किसी ने कहा कि दरबार साहब चो कीर्तन आलिया ने आनंद किया, तुसी किदां कहिंदे हो आनंद पढ़ना। सो साध संगत जी जरूरी नहीं कि असी सारे संथ्या करके कीर्तन सीखीए, बाला ए साध संगत जी ए गलत काम चल पिया है। माफी चाहुंदे हां, दमदमी टकसाल दे विच जदों विद्यार्थी जथे च भर्ती हुंदा, पहलां साध संगत जी दो दो तीन तीन महीने कैता पढ़ाया जांदा। जदों कैता पढ़दा बच्चा चंगी तरह महारनी सारा कुछ रटिया जांदा, फिर तीन चार महीने, पांच पांच महीने नेतनेम दी संथ्या, फिर पांच ग्रंथी दी संथ्या, फिर श्री गुरु जदों पांच ग्रंथी दी संथ्या तो बाद गुरबाणी दे विच बाई वारां दी संथ्या, फिर भगत बाणी सारी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संथ्या अलग पोथियां छापियां हुईयां। जदों भगत बाणी दी संथ्या हुंदी उहदे तों बाद विच पहले भाग दी संथ्या जिहड़ी आप जी पिछे पहले भाग पढ़े हुण दूजे फेर संथ्या आरंभ हुंदी। जदों भगत बाणी दी संथ्या संपूर्ण हो जावे विद्यार्थी नूं उदों अधिकारी मन्निया जांदा कि इह हुण कीर्तन सिखणा चाहुंदा है कीर्तन सिखे, तबला सिखणा चाहुंदा है तबला सिखे, जां कुछ होर जो भी उहदी इच्छा है। जदों तक भगत बाणी संपूर्ण नहीं हो जांदी उदों तक विद्यार्थी नूं कुछ होर सिखण दा इजाजत विद्यालयां दे विच नहीं दित्ती जांदी। कारण इह कि जे असीं सीधा ही कीर्तन सिख लिया, जिवें हुण माफी चाहुंदा असीं इह, मैं इस चीज़ की विरोधता नहीं करदा, बच्चे कई ऐसे ने साध संगत की गुरमुखी पढ़नी नहीं आउंदी ते कीर्तन दे राग गाउणे आ गए। कीर्तन दे राग गाउण दे नाल गुरबाणी शुद्ध पढ़न का कोई साध संगत की सरोकार ही नहीं है। गुरबाणी राग एक अलग विशा है, गुरबाणी एक अलग विशा है। सो सानू दोवां नू कंबाइन करके कठिया करके नहीं वेखण की जरूरत। राग ते साध संगत जी बार भी लोग शास्त्री संगीत भी है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਗ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਗ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਤੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਪਾਠ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਨ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਚੱਕਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਜੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਜ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਓ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਥਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੋਥੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ, ਆਨੰਦ ਬੋਲਣਾ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਜਾਣਾ,
आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे।

साजन पाठ भी थोड़ा जा कस के करना, भय सरसे, सरसे पाठ ही साधु संगत जी करना, सरसे नहीं करना। सो ए नवीन विद्वान जेडे हन उन्होंने सरसे पाठ करवाना शुरू कर दिता है, पिछे भी बेनतियां कीतियां इस पाठ नूं सरसे नहीं सरसे ही करना। संप्रदाय उचारण भी ते पाठ बनदा भी सरसे ही है। सो इस तरह किसी होर भैन मन दे विच रख के पाठ का उचारण नहीं करना। संत

अमर पाठ अमर ही करना अमर नहीं करना ते अटल पाठ अटल नहीं करना टहके ते अदक दा प्रभाव दे के अटल करना जग अमर अटल अतोल ठाकुर।

गुरु के सिख सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज भावें थले ही जाके बैठ गए सन कोठा साहिब तो फिर भज के गुरु के सिखा ने दरिया लिया विछाइया कीतियां। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी बाणी दे शब्द पढ़न लगे। जदों सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी ने आकाशवाणी की ते उस समय बाबा मोहन जी आप आए सन। पहले समय दे विच बाबा बुढ़ा साहिब गए, भाई गुरदास जी गए, बाबा मोहन जी की समाधि नहीं सी खुली। तो इस करके गुरु के सिखो गुरबाणी का सत्कार बहुत ज्यादा करना चाहिए। आप सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जदों पोथियां लैके आए, पोथी साहिब लैके आए, ते आप चौर साहिब जी की सेवा की। सतगुरु जी नंगे पैरी आए सन, इन्ना बिखड़ा पैंडा सी, सिखां दे पास बहुत ज्यादे साधन ने। गुरु के सिख श्रद्धा वाले भावना वाले कहिंदे ने कि जे श्रोमणी कमेटी ने गुरु साहिब जी दे स्वरूप भेजने

तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मह कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा सगल समगरी तुमरे सूतर तारी तुम ते हो सो तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास तुदिया गैर दास हमारी जियो पिंड सब कहु नानक सब तेरी वड्याई कोई नाउ न जान मेरा वाहिगुरु बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेक बहादुर सिमरी है घर नौन दया वै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी पंथ देवाली लोक प्रलोक के सहाय अमृत के दाते सचे पिता जी साध थाई होए सहाय दसां पातशाहियां जी दे जो ताकत चावर छत्र दे मालक सर्ब कला भरपूर जुगो जोगे अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन पाठ उपदेश जी का ध्यान तरके खालसा जी बोला जी पंजां प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख सुन कन डट कीता इतना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोला जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत आसीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सां सवासां संग निभाही इन्हां पुरातन वर्तमान समय दे सरबत शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोला जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके खालसा जी बोला जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलाओ जी बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदार नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल धर्म का जय जयकार बोलो जी आप जी दे सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु जी हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार पिता जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार

लोहे नाल लोहा टकराए, पत्थर नाल पत्थर टकराए, पित्तल नाल पित्तल टकराए, पित्तल सोने नाल टकराए, सोना चांदी नाल टकराए। टकराओ तो जिहड़ी आवाज पैदा होंदी है उहनूं कहिंदे ने आहत शब्द। पवन दरख्तां नाल टकराए, पानी पत्थरां नाल टकराए, उस टकराओ तो जिहड़ी धुन पैदा होंदी है, आवाज पैदा होंदी है, उहनूं कहिंदे ने आहत शब्द। अनाहत शब्द जो टकराओ तो नहीं, सीधा प्रकाश तो आया है, परमात्मा तो आया है। अनाहत नाद परमात्मा दी आवाज है। परमात्मा दिखाई बाद विच देंदा है, सुनाई पहले देंदा है। ये भी मैं अर्ज करता हूं। इस वास्ते कहिंदे ने सुतवा धर्मंग विजानाती। परमात्मा दी यात्रा भी सुन के ही शुरू होवेगी, उंज नहीं। उपनिषदों के ऋषि इंज कहिंदे ने सुरतवा धर्म विजानाती। चार पौड़ियां ने सुनिया दिया, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। शरीर नो भुख लगी है, एक एक भोजन दी बुरकी अंदर जाएगी, भुख बाहर निकलेगी। मन विच बेचैनी है, पाप है, संताप है। गुरु दा शब्द जैसे मन विच जाएगा, संताप पाप बाहर निकलना। सुनिए दुख पाप का नास, लाजमी नास होंगे। पर मन विच शब्द तां प्रवेश करेगा जे मन सुने, नहीं सुनदा तो शब्द मन तक नहीं पहुंचेगा, ना फिर पाप धुलणगे ना दुख मिटणगे। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। वो जो अनाहद नाद है उन्हों कबीर कहिंदे ने ओ अंकार है, उन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने ओ अंकार है, उन्हों गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने ओ अंकार है, उन्हों स्वामी महावीर जी कहिंदे ने ओ अंकार है, उन्हों अद्धे उपनिषदां दे ऋषि कहिंदे ने ओ अंकार है। पर अद्धे क्योंकि 108 उपनिषदां ने, इहदे च 60 उपनिषदां दे आचारिया उहनां दे नाम नहीं ने। उपनिषदां दो चार ही ने जिन्हां च नाम मिलदे ने, बिना नाम तो ये ग्रंथ ने, किसदे लिखे हुए ने कोई पता नहीं। पर 108 ने, जिहड़ा 108 उपनिषदां बनारस तो पढ़ के आ जांदा है उहनूं डिग्री मिलदी है श्री 108, श्री 108। पूरा कोर्स होंदा है, उहदे नाल तीन वेद भी पढ़े जांदे, अथर्वण नूं छोड़ के तीन वेद भी पढ़े आ, फिर उन्हों डिग्री मिलती है श्री 111। 108 उपनिषद ते तीन वेदां दा पूर्ण ज्ञान हासिल करने वास्ते, क्योंकि दास निर्मलियां दे डेरे बनारस च थोड़ा चिर रहे है, 35 साल लगते हैं। 35 साल जिंदगी दे 35 साल ते पहले पढ़न ते लगा, 20-25 साल की उम्र होवे ते बंदा पढ़न बैठे, गई जिंदगी ते गई। अक्सर ये बुढ़ेपे च डिग्री मिलती है, मैं ते हैरान होना ये डिग्री साड़ी नहीं है। पर गुरमत दे सारे जड़े संत अपने आप नूं आखांदे ने, सारिआं दे नाल लिखे आंदा श्री 108, श्री 108। हालांकि गुरबाणी की ग्रामर का भी पता कोई नहीं, अर्थां दा अनर्थ करी जांदे हुंदे ने, और इतिहास भी वो नहीं सुनांदे, मिथिहास भी उन्हां दा अपना ही बनाया हुंदा है। ते फिर भी श्री 108, श्री 111 उन्हां दे नाल लगे हुंदा है। खैर ये तेवें विचकार जो है गल आ गई। 60 उपनिषदां दे ज्ञानी ये कहिंदे ने वो आवाज ओम है, ओम धुनाकार आवाज, ओंकार की आवाज भी धुनाकार है, ओंकार। जिवें घड़ियाल वजाया तो आहिस्ता आहिस्ता उहदी धुन मध्यम आउंदी है, सेम इस तरह की आवाज ओंकार दी और इस तरह की आवाज ओम दी। कुछ उपनिषदां दे ज्ञानी कहिंदे ने वो ओम है, कुछ कहिंदे ने ओंकार है। मैं रात अर्ज की सी 4000 साल पुराना तीरथ है भारत विच नर्मदा दे कंडे ते, इस तीरथ का नाम है ओंकार।

0: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਣਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋਤ ਸਰਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ ਧਿਆਨ ਜੋਗ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸੇ ਤਿਆਗਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਸ ਕਵੀ ਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਨ
0: ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਵਲਾ ਬੁੱਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਹੋਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਰ ਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੋ ਕਭੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਕਿਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ
0: ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਤ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੇ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨੇਹੀ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖਿਆ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਾਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹੇ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹੇ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੇ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਬਰਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਜਿਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਜ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤੂਤਨ ਹੋਏ
1: ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਛੁ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਹਿਨ ਕੈ ਕਛੁ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਥੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਵੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਭੂ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਗਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤਨਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੁਲੂਕਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਮੰਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਦੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ
0: ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ में कमले ले
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीर एक
0: जो बसदा को खुदे को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक जो पाप का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
0: मन अपने सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रव्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भय
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का विता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को परबल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने थे
0: ब्रह्म ज्ञानी को सताया देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा अखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना है
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में भिख भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: अत्रिया रूप न भिख नेत्र
0: साध के टहल संत संग हेत
1: कर्ण न सुने काहू के निंदा
0: सबते जाने आप को मंदा
1: और प्रसाद भिखिया पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा है परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वह ने कर्म
0: इस वैष्णव का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंश है
0: केवल भगत कीर्तन संग रचय
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर हो वट कृपाल
1: आप दृढ़ है अबरह नाम जपावे
0: नानको वैष्णव परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भक्त का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन से बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: जिस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पय विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मैं जाने अस्थूल
1: जो वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदाया देश
1: बीज मंत्र सर को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर उरता रहे
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार
1: सर्व रोग का यो खद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम
1: काहू जुगत कितने न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगाह परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोची पर
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: सब की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हरक तैसा उस सोग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिखाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताए साई जुगत
0: नानक को प्रख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाऊ
0: जित जित घर रखे तैसा तन नाम
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सो ही पन होग
1: असरे आप हो अंत तरंग
0: लख न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे नहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक परकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी,
0: कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट भय तीर्थ वासी,
0: कई कोट मन प्रमय उदासी,
1: कई कोट वीर के स्रोते,
0: कई कोट तपी सरहोते,
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी,
0: कई कोट कब काव विचारे,
1: कई कोट नवतन नाम त्यावहे,
0: नान करते का अंत न पावे,
1: कई कोट भय अभिमानी,
0: कई कोट अंध अज्ञानी,
1: कई कोट कृपन कठोर,
0: कई कोट अभिग आत्म ने को,
1: कई कोट पर दर्भ को हिरहे,
0: कई कोट पर दुख न करे,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
0: कई कोट पर देश परमा है,
1: यत यत लाभ होते तित लगना,
0: नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंथी सर्प उपाए,
0: कई कोट पात्र बृख न बजाए,
1: कई कोट पवन पानी में संतर,
0: कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट शशि असुर नखत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिरशत्र,
1: सगल समग्री अपने सूत धारे,
0: नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस्थान सातक,
0: कई कोट वेद प्राण स्मृति अर शास्त्र,
1: कई कोट की रतन समुंद,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट की चिर जीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
1: कई कोट जख के निर्पिशाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच,
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर,
0: नानक आप लिपतरे अप्रभुर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म है जीवे मर है,
0: कई कोट बहु जोनी फिरे,
1: कई कोट बैठ सही खाहे,
0: कई कोट काले थक पाहे,
1: कई कोट की ये धनवंत,
0: कई कोट मा चिंत,
1: जय जय भाणा तह तह राखी,
0: नानक सब किस प्रभु के हाथे,
1: कई कोट भय बैरागी,
0: राम नाम सख्त लिव लागी,
1: कई कोट प्रभ को खोजंते,
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,
1: कई कोट दर्शन प्रप्यास,
0: जिनको मिलियो प्रभ विनाश,
1: कई कोट मांगे हैं सत्संग,
0: पार ब्रह्म तिन लगा रंग,
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
0: नानक तेजन सदा तन तन,
1: कई कोट खानी अर खंड,
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
1: कई कोट होए अवतार,
0: कई जगत की नो विस्तार,
1: कई बार बसरे उपासार,
0: सदा सदा एक एक अंकार,
1: कई कोट कीने बो भांत,
0: प्राप्त होए प्रभ माहे समात,
1: ताका अंत न जाने कोई,
0: आपे आप नानक प्रभ सोए,
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
0: हो वत्यातम प्रगास,
1: कई कोट तत्व के बेते,
0: सदा नहारे एको नित्रे,
1: कई कोट नाम रस पीव है,
0: अमर पहे सर सद ही जीव है,
1: कई कोट नाम गुण गाव है,
0: आत्म रसुक सह समाव है,
1: अपने जन को साथ साथ संभारी,
0: नानक को हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक,
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई,
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मई अल सोए, अष्टपदी
1: करण करावन करने जोग,
0: ज्योत भावे सोई होग,
1: फिर मैं ताप उताप नहारा,
0: अंत नहीं किस पारा वारा,
1: हुक्मे धार अतार रहावे,
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे,
1: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार,
0: हुक्मे अनेक रंग प्रकार,
1: कर कर दिखे अपनी बड़ियाई,
0: नानक सब में रहा समाई,
1: प्रभ भावे मानो गत पावे,
0: प्रभ भावे ता पात्र त्रावे,
1: प्रभ भावे बिन सास ते रखे,
0: प्रभ भावे ता हर गुण पाखे,
1: प्रभ भावे ता पत उधारे,
0: आप करे अपन विचारे,
1: दोहा श्रिया का आप स्वामी,
0: खेले से अंतर जामी,
1: जो भावे सो कार करावे,
0: नानक दृष्टि और न आवे,
1: ओ मनुख ते क्या होए आवे,
0: ज्योतिष भावे सोई करावे,
1: किसके हाथ होए ता सब पिछले,
0: ज्योतिष भावे सोई करे,
1: मन जानत बिखिया मह रचे,
0: जे जानते अपने आप बचे,
1: भरमे भूला दह दिसतावे,
0: नमक माहे चार कुंड फिर आवे,
1: कर कृपा जस अपनी भक्त दे,
0: नानक ते जन नाम मिले,
1: छिनवे नीच कीट को राज,
0: पार ब्रह्म गरीब नवाज,
1: जाका दृष्ट कछु न आवे,
0: जिस तत्काल दर दिस प्रगटावे,
1: जाको अपनी करे बख्शीस,
0: ताका लेखा न गणे
1: जीव पिंड सब इसकी रास,
0: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास,
1: अपनी बनत आप बनाई,
0: नानक जीवे देख बढ़ाई,
1: इसका बल ना ही इस हाथ,
0: कल करावन सर्व को नाथ,
1: आज्ञाकारी बपरा जियो,
0: ज्योति स्वभाव है सोई फन थी,
1: अब हूँ ऊंच नीच मैं बस
0: है, अब हूँ शोक हर करंग हस है,
1: अब हूँ निंद चिंद व्यवहार,
0: अब हूँ कुबे काश प्याल,
1: अब हूँ बेता ब्रह्म विचार,
0: नानक आप मिलावन हार,
1: अब हूँ नृत्य करे बहु भांत,
0: अब हूँ सोए रहे दिन रात,
1: अब हूँ महाक्रोध विकराल,
0: अब हूँ सर्व की होतर वाल,
1: अब हूँ होए वह बड़ राजा,
0: कभू भिखारी नीच का साजा,
1: कभू अब कीर्त में आवे,
0: कभू भला भला कहावे,
1: ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे,
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे,
1: कभू होए पंडित करीब ख्यान,
0: कभू मोहन तारी लावे ध्यान,
1: कभू तट तीर्थ स्नान,
0: कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: कभू पीठ हस्त तंग होए जिया,
0: अनक जौन परमे परमिया,
1: नाना रूप जो सुवांगी दिखावे,
0: जो प्रभ भावे तिवे न चावे,
1: ज्योति भावे सोई होए,
0: नानक दूजा अवर न कोए,
1: कभू साध संगत पावे,
0: उस स्थान ते बौर न आवे,
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश,
0: उस स्थान का नहीं विनाश,
1: मन तन नाम रते एक रंग,
0: सदा बसाय पर ब्रह्म का संग,
1: ज्यों जल में जल आए कटाना,
0: ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना,
1: मिट गए गवन पाए विश्राम,
0: नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक,
1: सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले,
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतरराज अभिमान
0: सो नरक पाति होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत बिष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नानकी है मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंत होए कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का होए विनाश
1: सत्य आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: सेना पद आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हो धारी
0: शरम पावे सगले बरथारे
1: अनक तपस्या करे हंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: किसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताके निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: तब इस को सुख नाही कोई
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना अनक हो छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रतन आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विद्या के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आते आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभु सोए
1: जो किस पीनो सो अपना रंग
0: तब ते दूर सब हूं कै संग
1: दूजे देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसे आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपे रचिया सब कै साथ
1: आप कीनो आपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: कोसते भिन्न कहो किस होए
0: हाथ नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदै के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: घट घट सुने सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन हार जा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग नंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यों लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित्र
1: संत के दुखी को डान लागे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते टरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी कित काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृतक की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजा पे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउ बिल लाए
0: ज्यों जल बे होन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: ज्यों बवार तिर खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दुखा तुर ही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइय
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइय
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न त्रिष्टै कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहु दिन रात
0: तिसे त्याहु सास ग्रास
1: सब कछ वरतै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वडपा की नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर गाई
0: एक आस हर मन रखो ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ,
0: ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ,
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ,
0: ਔਰ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ,
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ,
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਕਿਸਨਾ ਹੀ ਹਾਥ,
1: ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ,
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ,
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ,
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ,
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ,
0: ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ,
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ,
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ,
1: ਨੈਨੋ ਭੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ,
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ,
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ,
0: ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ,
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼ਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ,
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ,
1: ਬੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੀ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ,
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ,
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ,
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ,
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ,
0: ਤੇਤੋ ਤਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ,
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ,
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ,
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ,
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ,
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ,
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤਿਓ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ,
1: ਹਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ,
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ,
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ,
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਾਸਾ,
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ,
0: ਨਾਨਕ ਦਸਣ ਲਾਗੈ ਦੁਖ,
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਚਿਤ ਆਵੈ,
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ,
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ,
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ,
1: ਜੈਸਾ ਸਾਥ ਐਸਾ ਦਿਸ਼ਟ ਆਇਆ,
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ,
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ,
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ,
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ,
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ,
1: ਨੈ ਕਿਸ ਜਨ ਮੈਂ ਨੈ ਕਿਸ ਮਰੈ,
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ,
1: ਆਪਣ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ,
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ,
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ,
0: ਅਨੰਤ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾ ਬਿਥਾ,
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਖੰਡ,
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ,
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ,
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ,
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੰਤ,
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨ ਮੰਤ,
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ,
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ,
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ,
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ,
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ,
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ,
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ,
0: ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ,
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ,
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ,
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ,
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ,
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ,
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਈ,
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ

0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਟੂਟੀ ਗੰਢ ਨਹਰ ਗੋਪਾਲ
0: ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪਤਪਾਲ
1: ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੀ
0: ਇਸਦੇ ਵਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ
1: ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ
0: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ
1: ਆਪਨ ਕੀ ਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਏ
0: ਜਿਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ
1: ਜਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ
0: ਰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬ ਹੈ
0: ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀ ਆਦਰ ਪੈ
1: ਹੱਥ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਵਹਿ ਦਾ ਤਾਰ
0: ਇਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਾਵਾਰ
1: ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾਇਆ ਰੋਗ
1: ਜਿਉ ਮੰਦਿਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ
0: ਜਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ
1: ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਤਰੈ
0: ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰਖਤ ਨਿਸਤਰੈ
1: ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ
1: ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ
1: ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
1: ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂਤ ਸਹਿ ਚਤਾਰ
1: ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ
0: ਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਅਜਾਨ
1: ਕੌਣ ਬਸਤੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ
0: ਲਪਟ ਰਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਬ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ
1: ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ
1: ਅਜ ਬਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ
1: ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਚਾਲ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਖਿਆ ਜੰਜਾਲ
1: ਧਨ ਧਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ
0: ਮੁਖੋ ਜਲਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ
1: ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਤਿਵਰ ਹਾਰ ਹੈ
1: ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ
0: ਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ
1: ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੱਖੈ
0: ਅਰਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮਨ ਤਰਸ ਚੱਖੈ
1: ਓਟ ਗਈ ਸੰਤ ਹੰਦਰ ਆਇਆ
0: ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ
1: ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵੱਲ ਨਹਾਰ
0: ਭੁਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ
1: ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹਵਾ ਨ ਹੋਗ
1: ਜਪ ਜਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ
0: ਸਭਤੀ ਉਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ
1: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ
1: ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਕੋ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ
0: ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
1: ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਆਂ ਤਿਹ ਲੋਏ
0: ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਇੱਕੋ ਹੋਏ
1: ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਚਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ
0: ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ
1: ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ
0: ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ
1: ਰੂਪ ਨਰੇਖ ਨਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ
0: ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ
0: ਮਾਨੋ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ
1: ਤਿਸੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹੋਏ
0: ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ
1: ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ
0: ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਕਿਰਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ
1: ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹ ਨਰਾਉ
1: ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋ
1: ਹਰਨ ਭਰਮ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ
0: ਇਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ
1: ਅੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਂ ਕੈ
0: ਸਰਵ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ
1: ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ
0: ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਕ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ
1: ਧਿਆਈ ਧਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
0: ਨਾਨਕ ਦਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ
1: ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ
0: ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ
1: ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ
0: ਸਗਲ ਪਰੋਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ
1: ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ
0: ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
1: ਦੇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰਮਾਈ
0: ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ
1: ਪੂਜ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ
0: ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ
0: ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੇ ਇੱਕ ਰੰਗ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੀਨੋ ਵਿਸਾਰ
0: ਰੱਬ ਬਿਨਾਸੀ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਥਿਨ ਮਾਹੀ
0: ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰਬੰਤ ਬਣਾਈ
0: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ
1: ਸਭ ਘਰ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ
0: ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗੁਧਰੇ ਸੁਣ ਸਰਵਣ
1: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
1: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ
0: ਸਤ ਕੇ ਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
1: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ
0: ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਹੇ ਸਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ
0: ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
1: ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ
0: ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ
0: ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਮ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
1: ਸਤ ਭਜਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼
0: ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ
0: ਨਾਮ ਜਬਰਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤ ਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਣੈ ਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਨ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
1: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ
0: ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ
0: ਗੁਰ ਕੈ ਵਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟ ਨ ਹਾਰ
0: ਜਗ ਕੈ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਸੰਸਾਰ
1: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ
1: ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ
0: ਪੇ ਸੱਚ नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसन हार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत त्यावनहार
1: आप सत सत सवधारी
0: आपे गुण कारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: भुजन हार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: नानक रावण तिन मूल पछाने
1: जाके हृदय विश्वास प्रभ आया
0: तत ज्ञान ते समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजा ते समाहे समाना
1: बस माहे ले बस कटाई
0: ताको पिंड न कहना जाई
1: भूजे भूजन हार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभ पालन हारा
0: सेवक की रखे निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभ धारे
0: नानक सो सेवक सास सास समार
1: अपने जान का पर्दा ढक है
0: अपने सेवक की सर पर रख है
1: अपने दास को दे बढ़ाई
0: अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आप पत रख है
0: ताकि कदमित कोई न लख है
1: रब के सेवक को न पहुँचे
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभ अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रख है
0: भस्म कर एलस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मांस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य प्रथे जात
1: मारे न रख है अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभ लख बडाणी
1: बारंबार बार प्रभ जपी है
0: ये अमृते मन तन तरपी है
1: नाम रतन जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न हिंद दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मन तन नामे नाम समाने
1: ऊर्त बैठ सोबत नाम
0: कहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जीवा दिन रात
0: रब अपने जन की नींदात
1: करे भक्त आत्म कह चाहे
0: रब अपने से रहे समाई
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रब अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण क्या एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ असे हजूरे
0: कहो नानक से जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट ले
0: मन तन अपना तिन जन दे
1: जिन जने अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: इसकी शरण सर्व सुख पावे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अवर सियान सगली छाट
0: जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम
0: तिसके संग सिख उदर है नानक हर गुण गा अष्टपदी
1: सतगुर सिख की करे प्रतपाल
0: सेवक गुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिरे
0: गुर बचनी हर नाम उचरे
1: सतगुर सिख के बंधन काटे
0: गुर का सिख बकार ते हटे
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख बड़ भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समार
1: गुर के गृह सेवक जो रहे
0: गुर की आज्ञा मन में सह
1: आप उसको कर कष न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावे
1: मन बेचे सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत होए निकामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: इस विश्व गुर का मन मान है
0: सो सेवक परमेश्वर की गद जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाउ
0: नानक बार गुर को बल जा
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आज पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म ने जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कछ भरम
1: सह सियान पलया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: दर्शत चरणगत निर्मल रीत
1: भेटत संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगह गवे
1: सुनकर वचन करन आगाने
0: मन संतोखा तंपति आने
1: पूरा गुर अखियो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्ट पे कह हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भावे तिस लए मिलाए
1: देवाए को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: काहू बोल न पहुंचत प्राणी
0: अगमा गोचर प्रभ निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंदन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतपुरे अपने
0: नानक जिस प्रसादा सा प्रभ जपने
1: यो हर रस पावे जन कोई
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन पर टे गुणतास
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक भरम बहु दुख ते नासे
1: सत माही ठांड वरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: भव चुका निरपो होए बसै
0: सगल व्याध मन देखे नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: सा संग जप नाम मुरारी
1: चित पाई चुके भ्रम गमन
0: सो नानक हर हर दे सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने चरित प्रभ आप बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साधक संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: नानक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चलै बिन भजन बिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावन नानके हो तन सार अष्टपदी।
1: संत जना मिल करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अब रूपाव स्वामी पसारो,
0: शरण कमल विद मैं और तारो,
1: कर्म कान सो प्राप्त सम्राथ,
0: दृढ़ कर गह नाम हर बत,
1: केहु तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार उठता वही,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करहे भली करनी,
0: सा शोभा पर हर की सरनी,
1: अनको पावी रोग न जाए,
0: रोग मिटे हर अवखत लाए,
1: सर्व निधान मैं हर नाम निधान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्थापते अवैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसै हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: औ बिन सह पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसै अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: हथ विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ से,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: क्यों रत्न जन्म का होए उधार,
0: हर सिमर पुराने आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करो मन लाए,
0: मन वंचित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थिर है तना,
0: गल बटावे मूर्ख मना,
1: सुत मीत कुटुंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू लेह आने,
0: भक्त बिना भव डूबे सियाने,
1: भक्ति भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत,
1: चरण कमल रखो मन माही,
0: जन्म जन्म के कल विख जाहि,
1: आप जपो अबरा नाम जपावो,
0: संत कहते रहत गत पावो,
1: सार पूर सत हर को नाओ,
0: सहस भय नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: जनस जाय हो मैं बिख फैल,
1: ओहे अचिंत बसै सुख नाल,
0: सात ग्रासर नाम समाल,
1: छाट सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सस्तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: हम सुख दर गय जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जाप एको सलाहे,
0: एक समझ एको मन आहे,
1: एक स्के गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे प्रव्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक आराध प्रास्त गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: हर कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ के गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: करो प्रभ की नित नीत,
1: एको एको आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोए,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साध का संग,
1: परे शरण आन सत्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग,
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुर दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए उदयाल,
0: सेवक की नुसदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: जिच पुन्नी सरदा सा पूरी,
0: अब रहे सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाए,
1: सो क्यों बिसरे जे काल न पाने,
0: सो क्यों बिसरे जे किया जाने,
1: सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया,
0: सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया,
1: सो क्यों बिसरे जे अगन मह राखे,
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है,
1: सो क्यों बिसरे जे बिख ते काट है,
0: जन्म जन्म का टूटा गंढ है,
1: गुर पूरा तत ए है बुझाया,
0: प्रभ अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो ए काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अपने नाम जपावो,
1: भगत भाई तरी है संसार,
0: भगती तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निध नाम,
0: मूढ़त जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का हो वतनास,
0: नानक नाम जपो गुण तास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाव,
1: नेत्रों देख दर सुख होए,
0: मन बिकसै साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: बिरला को पावे संग,
1: एक बस दीजै करमया,
0: गुर प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: प्रभ बख्शंद दीन दयाल,
0: भगत बछल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: आद पुरख कारण करतार,
0: जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो हे पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़ियाई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी शोभा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक परगा, श्लोक
1: स्वर्गुण निर्गुण रंग
0: सुन समाधि आप। आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी
1: जब अकार एहो कछ ना दिसटेता
0: आपन तब कहते होता
1: जब धारी आपन सुन समात
0: बैर विरोध के संग कमात
1: जब इसका वर्ण चेहन ना जापत
0: जब हरक सो को कसै व्यापत
1: जब आपन आप आर ब्रह्म
0: मोह कहा किस होवत परम
1: आपन खेल आप वर्ती जा
0: नान करने हार न दूजा
1: जब होवत प्रब केवल धनी
0: सब बंध मुगत कहो किस कहो गनी
1: जब एक ही हर अगम अपार
0: जब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्रभ सह सुपाई
0: जब शिव शक्त कहो हित ठाए
1: जब आप ही आप अपनी जोत धरै
0: जब कवन निडर कवन कत डरै
1: आपन चलित आप करने हार
0: नानक ठाकुर अगम अपार
1: अवनासी सुख आपन आसन
0: तै जन्म मरण कहो कहा विनाशन
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
0: तब जम की त्रास कहो किस होए
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका
0: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
1: आपन आप ही अचरजा
0: नानक आपन रूप आप ही उपर जा
1: जय निर्मल पुरख पत होता
0: जय बिन मैल कहो क्या तोता
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
0: जय कौन कमान कौन अपमान
1: जय स्वरूप केवल जगदीश
0: जय शल शिदर लगत कौ कीस
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
0: जय किसै भूख कवन तृप्तावे
1: करन करावन करने हार
0: नानक करते का नहि समार
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
0: तब कवन माए बाप मित्र सत भाई
1: जय सर्व कला आपे प्रवीण
0: जय वेद देव कहा को चीन
1: जब आपन आप उतार है
0: शगन आप शगन कहा विचार है
1: जय आपन ऊच आपन आप नेरा
0: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
1: विस्मन विस्म रहे विस्माद
0: नानक अपनी गत जान हो
1: जय छल अशेद अभेद समाया
0: वहाँ कसे व्याप्त माया
1: आप उसको आप ही आदेश
0: देवर का ना ही प्रवेश
1: जय एक ही एक एक भगवंता
0: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता
1: जय आपन आप पतियारा
0: जय कौन कथा कौन सुनने हारा
1: बहु बेअंत ऊच ते ऊंचा
0: नानक आप उसको आप पहुँचा
1: जय आप रचियो प्रपंच आकार
0: गुण मैं की नो विस्तार
1: पाप पुन तह पई कहावत
0: ओ नरक को स्वर्ग विशावत
1: काल जाल माया जंजाल
0: मैं मोह परम पै भार
1: दुख सुख मान अपमान
0: अनक प्रकार की उपख्यान
1: अपन खेल आप कर देख है
0: खेल संकोचे तो नानक एक है
1: जय अवगत भगत है आप
0: जय पसरे पसार संत प्रताप
1: तुम पाप का आप ही धनी
0: उनकी शोभा उन्हों बनी
1: आप ही कौतुक करे अनंत जोज
0: आपे रस भोगन निर्जोग
1: जिस भाव है तिस आपन नाई लावे
0: जिस भाव है तिस खेल खिलावे
1: बेशुमार अथाह अगंत अतुल
0: ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक
1: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार
0: नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार अष्टपदी
1: आप कथा आप सुनने हार
0: आपे एक आप विस्तार
1: जात पावे तां श्रेष्ठ उपाय
0: अपने भाणे लय समाये
1: तुम ते भिन्न नहीं किश होए
0: आपन सूत सब जगत परोए
1: जाप प्राप्ति आप बुझाए
0: सच नाम सोई जन पाए
1: सो समदर्शी तत् का बेता
0: नानक सगल श्रेष्ठ का जेता
1: जी जंत्र सप्तां कै हाथ
0: दीन दयाल अनाथ को नाथ
1: जिस राखे तिस कोई न मारे
0: सो मुह आज समहा बिसारे
1: सच अवर कहां को जाए
0: सब सिर एक निरंजन राय
1: की युक्त जान के सब हाथ
0: अंतर बाहर जान साथ
1: गुण निधान बेअंत अपार
0: नानक दास सदा बलहार
1: पूर्ण पूर रहे दयाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: अपने कर्तव्य जाने आप
0: अंतर जामी रहो व्याप
1: प्रत पालै जी अनुभव भांत
0: जो जो रचियो सो तिसै त्यात
1: जिस भावै तिस लय मिलाए
0: भगत करै हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया
0: करन हार नानक एक जाने
1: जन लागा हर एक कै नाई
0: जिसकी आस न वृथी जाए
1: सेवक को सेवा बन आई
0: हुकम बोझ परम पद पाई
1: इससे ऊपर नहीं भी चार
0: जाकै मन बसया निरंकार
1: बंधन तोर भय निर्वैर
0: हर दिन पूजा गुर के पैर
1: ए लोक सुखी ए परलोक सुहेले
0: नानक हर प्रभ आपे मेले
1: साथ संग मिल करो आनंद
0: उनका वो प्रभ परमानंद
1: राम नाम तत् करो विचार
0: दुर्लभ देखा करो उदार
1: अमृत वचन हर के गुण गाओ
0: राम तरन का एह स्वाव
1: आठ पैर प्रभ देखो नेरा
0: हटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा
1: सुख उपदेश हृदय बसावो
0: मन इच्छे नानक फल पावो
1: हलत पलत दोए लेहो सवार
0: राम नाम अंतर उरतार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया
0: मन बसै ते साच परीखिया
1: मातर नाम जपो लिब लाए
0: दुख दर्द मन ते पहो जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी
0: दरगह निध है खेप तुम्हारी
1: एक काटे कर रखो मन माहे
0: नानक पहुर न आवे जाहे
1: जिससे दूर कहाँ को जाए
0: उबरे राखन हार ते आए
1: निर्भव जपै सकल भव मिटे
0: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे
1: जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख
0: नाम जपत मन होवत सुख
1: चिंता जाए मिटे हंकार
0: जिस जन को कोई न पहुँचन हार
1: सिर ऊपर ठाड़ा गुरसूरा
0: नानक ताके कार्ज पूरा
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट
0: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट
1: चरण कमल जाके अनूप
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
1: भान सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामी पुरख प्रधान
1: जिस मन बसै सुहोत निहाल
0: जाकै निकट न आवत काल
1: अमर भये अमरा पद पाया
0: साध संग नानक हर त्याया श्लोक
1: ज्ञान निरंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश
0: हर ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ
0: ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕ ਘਟ ਮਾਹੀ
0: ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ
1: ਨੌ ਨਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ
0: ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ
1: ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹਦ ਤਹਿਨਾਦ
0: ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈਏ ਚਰਨ ਬਿਸਮਾਰ
1: ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਰ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ
1: ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ
0: ਘਟ ਘਟ ਪਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਰਨ ਮਾਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ
0: ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਮਨ ਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ
1: ਆਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤਰ ਮਾਹੀ
0: ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੀ
1: ਇਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉਂ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ
1: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ
0: ਸਸਿਆ ਸੂਰ ਨ ਖਤਰ ਮੈਂ ਏਕ
1: ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ
0: ਆਪ ਡੋਲ ਨ ਕਬ ਹੁਣ ਡੋਲੇ
1: ਸਰਬ ਕਲਾਕਾਰ ਖੇਲੇ ਖੇਲ
0: ਬੋਲ ਨ ਪਾਈਏ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ
1: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਗੀ ਜੋਤ
0: ਧਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਵੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ
0: ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
1: ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ
0: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ
1: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
1: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਪੀਓ ਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
1: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਾਰ
0: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ
1: ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
1: ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
1: ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
1: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ
0: ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪ ਖਨਹਾਰਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾ ਤਨਾ
0: ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
1: ਆਵਨ ਜਾਨਿਕ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ
1: ਸਭ ਕੈ ਮਤ ਅਲਿਪਤ ਹੋ ਰਹੇ
0: ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੇ
1: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਏ
1: ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ
0: ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ
1: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਆਤਨੀ ਕੀ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ
1: ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ
0: ਬੋਤ ਬੋਤੇ ਆਪਣ ਸੰਗਰਾਚ
1: ਕੀ ਗਰਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ
0: ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ
1: ਇਸ ਕਾ ਕੀ ਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਣ
1: ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੋ
0: ਆਪ ਮਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਬਹੁਤ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ।

0: आप छोड़ बेनती करहो
1: सात संग अगन सागर तरहो
0: हर धन के भर लेहो भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: सात संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चित चितव हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का एह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाल एह रतन
0: संत कमाप होत उधार
1: आप त्रैलो कै निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजे
1: सुन सुन अमृत करे प्रभु गाजे
0: प्रगटे गोपाल महांत कै माथे
1: नानक उदरे तिनकै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
0: मिट गए बैर भई सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भई गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेव
0: आल जंजाल विकास के रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
1: नानक नभि खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्थित करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुख मनी सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सहोत निधान
0: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब दे ऊच पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निद
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सकल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टिता
0: ये फल तिस जन के मुख भने
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: केहो निधान जपै मन कोई
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
0: सगल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत के मन बसराम
0: ओट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटै
0: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
1: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरण ता का दुख निवारै
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृत ता की बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिनसे भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सत्य ऊज ताकी शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुखमनी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

जिते शस्त्र नामंग नमस्कार तामंग जिते अस्त्र पेयंग नमस्कार तेयंग जिते शस्त्र नामंग नमस्कार तामंग जिते अस्त्र पेयंग नमस्कार तेयंग चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुक्ते सोयं भम सुभम सर्वदा सर्वजुक्ते दुकालं।

धार्मिक इकट्ठ धार्मिक सोच बोझ नो पैदा करने वास्ते गुरु द्वारे होए सोझी पाइस इथे आपां आया सोझ ते समझ लैण वास्ते। किस दी समझ? घर दी समझ, दर दी समझ। दर घर की सोझी ना है, ना घर दा पता ना दर दा पता। हुण होर भी मैं अर्ज करां, घर विच प्रवेश उसनों मिलदा जिहड़ा पहले दर ते पहुंचे। पहले दर ते पहुंचना होंदा, दरवाजा पहले होंदा। घर बाद दे सो दर के हा, सो घर के हा जित वै सर्व संभाले। एक होर भी अर्ज करदे हां, परमात्मा निराकार है, आकार तो रहत है। इनू बयान करके मैं अगे चला। सारा आकार उस तो आउंदा जिहदा कोई आकार नहीं, सारे रूप उस तो आउंदे जिहदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उस तो आउंदे जिहदा कोई रंग नहीं। चक्र चैन अर वर्ण जात अर पात नहिं जे, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत, अरूप हैं अनूप हैं। या इंज कह लो, सारे मजहब भी उस तो आउंदे जिहदा कोई मजहब नहीं है। ऐ शब्द भी सुन लो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे, नमस्तम अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तम अमजबे, नमस्तस्त अजबे, हे अजब स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं। ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ना तू यहूदी है, ना तू पारसी है, ना तू जैनी है, ना तू बौद्धी है, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तेरे कोई तात मात नहीं, तेरा कोई मजहब नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी हिम्मत से बड़ी जुरत दिखा रहे ने थे, नमस्तम अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनो, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। मजहब एक रास्ता है, मजहब का अगर कोई माण भी कर रहा है तो रस्ते दे चे, ठीक है, रस्ते चे घर तक पहुंचने वास्ते रास्ता चाहिए। घर पहुंच गया कोई मजहब नहीं, क्योंकि जिसका घर है, जिस दे घर दे जाना है, उसका कोई मजहब नहीं। सारिया नदियां सागर की तरफ जांदियां ने, हर नदी का किसी मुल्क नाल भी संबंध है, कुछ धार्मिक क्रियावां नाल भी संबंध है, इलाके नाल भी संबंध है। ते हर नदी का अपना नाम भी है, ये गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है, जेलम है, ब्रह्मपुत्र है। इन्हों का इलाकों नाल और मुल्क नाल संबंध है। असी कह सकते हैं दरिया हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान दे वगदा है। फिर इन्हों के नाम ने, फिर दजला है, फरात है, ये इराक दे विच वगदे ने, तो मुल्क ते इलाके दा संबंध उन्हां नाल जुड़ंदा है। भी ये दरिया इराकी ने, इराक दे ने, उत्थे वगदे ने, दजला फरात उत्थे वगदा। नील नदी मिस्र दे च वगदी है, तो असीं कह सकदे हां इह ते मिस्री है, इजिप्शन है, मिस्र दे च वगदी है। उस इलाके नाल इसका संबंध है, इसका नाम है। थेम दरिया इंग्लैंड दे च वगदा है, असी कह सकते हैं इसका इंग्लैंड नाल संबंध है, इसका नाम थेम है। पर जब सारे सागर दे चलीन हो जाते हैं, सारिया का नाम इको ही हो जाता है कि सागर, ना गंगा ना जमुना, ना सतलुज ना ब्यास, ना रावी ना चनाब, ना गोदावरी ना नर्मदा, ना दजला ना फिरात, ना नील ना थेम। जब भी कोई प्रभु दे चलीन हो जाता है, गुस्ताखी माफ मैनू कह देना, ना वो हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना जैनी है, ना बौद्धी है, ना यहूदी है, ना पारसी है। जितने चिर तक पारसी है, यहूदी है, हिंदू है, इतने चिर तक ये नदी तो है, सागर नहीं है, नहीं है, समुंदर नहीं है। मेरे ख्याल इतने ही शब्द बर्दाश्त कर सकोगे, इतना ही कहना मैं। कई बड़े तारके आते हैं, कटर बड़े होंगे,

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: परम सम्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप जी ने पट कीरत साहिब जी दी रचना तो उच्चारण कीता होया गुरु रामदास कृपालू जी दी सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ

अपने अंदर दी बिरति पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती हुई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहण वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे इन्हां तिन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंदे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श। आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपालता फिर

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिवें तंदूर दे विच लकड़ां बल

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। अवतारी पुरुषानु सुखे सिद्ध जगत वल्लों कुछ उपनाम मिलते ने जिन्हों तखल्लुस कहते ने, कोई खासियत देख के कोई अहमियत देख के उन्होंने नाम दिता जाता है। समुची जिंदगी मर्यादा विच बजी हुई देख के जगत दे मुंह निकलिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिंदगी एक खेल है तमाशा है, जन्म नफा भी खेल नुकसान भी खेल जवानी भी खेल बुढ़ेपा भी खेल। जिसने ऐसा समझिया जानिया और जीविया देशवासियों ने उसनु कहा लीला पुरुषोत्तम

लगा जगत एक पीड़ा है, एक दुख है, एक रोग है, और उस रोग का समाधान लेके, उस रोग दी औषधि लेके जिसने देश देशांतरां दा रटन कीता और रोगियां नूं स्वस्थ करदा रहा, समस्त दुनिया दी जबान तो ये शब्द बुलंद बांग बुलंद होया, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां। ये तो ऐसा बाबा आया है जो रोगियां लई वैद है, इसते कुल औषधि है। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज दी इस गल नूं समझना होवेगा, जगत एक पीड़ा है। तो जगत तो मुराद की लिए मनुख, मनुख स्वयं एक पीड़ा है, मनुख ही समस्या है। ये नहीं कि मनुख दियां समस्यावां ने, नहीं, मनुख खुद ही एक समस्या है। ऐसा है कि मनुख दियां वेदनावां ने, मनुख दे दुख ने, ऐसा नहीं, मनुख खुद ही एक दुख है, मनुख खुद ही एक पीड़ा है, मनुख खुद ही एक वेदना। जद मनुख है तो पीड़ा है, मनुख है तो दुख है। और गुरु नानक इस दी शुरुआत इंज कर देने, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, सुख ते किधरे भी नहीं दिखाई देंदा। जन्म भी पीड़ा है, जीवन भी पीड़ा है, मरण भी पीड़ा है। एक भ्रांति है मनुखा नु, जन्म सुख है, जीवन सुख है, सिर्फ मौत पीड़ा है। तो जीवन भर जन्मदिन मनाना है क्योंकि जन्म सुख है, जीवन दी लालसा रखनी है क्योंकि जीवन रस है, मौत पीड़ा है इसनु भुलाना है, मौत वेदना है इसनु गलत करना है। मौत ही दुख है ये चेते ना आवे। मनुख ने शमशान घाट भी बस्तियां तो दूर बनाए, कब्रिस्तान भी शहरां तो दूर बनाए, जीवदे जागदे मनुख दिखाई देन, कब्रिस्तान ना दिखाई देन, हसदे खिड़दे चेहरे दिखाई देन, जल्दियों या लाशां ना दिखाई देन। और घर विच कोई मृत्यु हो गई है तो कोशिश कीती जांदी है सारियां दे अंतिशकरण विच मौत बैठ जाए, उस तों पहले इस नूं घरों कढ़ो, इस तों पहलों कढ़ो, जला के खाक कर दो, जीवन चेते रहे, जन्म चेते रहे, मरण भुलाओ भुलाओ। ये पहला अवतारी पुरुष रूहे जमीन ते आया जिसने मनुखता दे सामने बुलंद वांग होके कहा, जन्म दुख है। शायद तुसी सारे दुख दा ही जन्मदिन मना रहे हो और दुख दे जन्म दी खुशियां मनांदे हो, यहीं नच रहे हो, टप रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बोध नहीं है, समझ नहीं है, मनुख नु दुख दी भी समझ नहीं। अगर दुख दी समझ आउंदी तो शायद उसनु ये समझ आ जांदी, जन्म दुख है, जन्म दुख है, जन्म दा बोध नहीं है, इस वास्ते दुख दा बोध नहीं है, दुख दा बोध नहीं है, इस वास्ते जन्म दा बोध नहीं है। जीवन दी लालसा है, दुख दा ज्ञान नहीं है, इस वास्ते कह सकते हैं जीवन दा भी ज्ञान नहीं है। और धार्मिक दार्शनिक ऐसा कहंदे ने, जो मेरी समझ देच नहीं ओ नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया देते नहीं है। होवेगा परमात्मा, होवेगा किधरे सुख, होवेगा दुख, होवेगा कलेश, पर मेरी समझ देच नहीं तो नहीं है। जैसे पत्थर दी दुनिया च कोई कलेश नहीं है, कोई सुख नहीं है, ना सुख दा बोध